0: आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सत गुरुदेव की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: पुष्पा वन वर्जन इफ आई लाइक इट मोर देन आई विल हैव वन मोर।
2: सतगुरुदेव की जय।

लक्ष्मी बीरबाई की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज की आनंद की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय।

हरे भगवान श्री नरेंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव श्री देवपुरी जी महादेव की जय।

0: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
0: देवदि देवम श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
0: की जय।

जय श्री हिंदू धाम समर मन वन सरे गुरुदेव की जय विश्व गुरु मा मनलेश्वर परमांश स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

जय श्रीमद्वनंदी सद्गुरुदेव की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री देवा पुरी समादेवा की जय, श्री देवत सिंह जी की जय।

भगवान की जय। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। महामंद्रेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री नारायण भगवान
1: की
0: की।
1: जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी सद्गुरुदेव भगवान की।
1: जय
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री

0: And that's why name is also the Joshimath. But he's of course not from that ashram, but from this area. So he will chant on the occasion of the holy Guru Purnima, Guru Stuti, first Swastivachan and the Guru Stuti. So we welcome our Panditji.
1: खड़े हो जाओ इधर.
0: हाँ, गुरु जी के पास. एंड यू कैन पुट द कैमरा ऑन हिम इफ इट इज फंक्शनिंग स्टिल. आप तो चालू करो.
2: परम सम्मानीय पूज्य पाद श्री स्वामी संजन स्पर्श सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ. आई विल चांट मंत्र फॉर पीस ऑफ एवरीबडी हार्ट माइंड पीस ऑफ दिस प्लेस ऑस्ट्रेलिया और कंट्री एंड फॉर

0: गुरु पूजन करना।
1: हाँ
0: हमारा तो दुष्ट ढंग का है, लेकिन
1: गांधी से ढंग का
2: जोश वही करे। गुरु परंपरा इन इंडिया, वी रिस्पेक्ट ऑल अवर मास्टर्स
1: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग
2: एंड गुरु पूर्णिमा इज कमिंग यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर टू सी द दर्शन ऑफ गुरुदेव। इट स्टार्ट फ्रॉम द नारायण।

परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।

दीप नारायण भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की। सनातन धर्म की। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भक्तास, स्पिरिचुअल सीकर्स, हियर इन दिस हॉल।

लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हो शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गजानंद भगवान की जय। पहले गजानंद जी की जय बोलनी चाहिए थे, भूल गए। गजानंद जी महाराज क्षमा कीजिए, आपकी सबसे पहला स्वीकार कीजिए। गजानंद जी भगवान की जय। ओ बस लड्डू खाते हैं बड़े। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, स्पिरिचुअल सीकर्स, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा एंड लाइफ एंड गोइंग टू द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ योगा। योग योग कर्म सुकौशलम। भागवत गीता सेड योगा कर्म सुकौशलम। अच्छे कर्म, व्हेन यू डू द गुड कर्म, कर्म योगा, देन योर योग साधना विल बी सक्सेसफुल, नंबर वन। बट टू बी ए सक्सेसफुल इन योग साधना मीन्स नॉट दैट यू इंटर इन टू द ब्रह्मलोका, दैट्स इट। देयर इज द की टू द ब्रह्मलोका। Therefore, it is said, moksha mulam guru kripa. Finally, the door is there, and who is opening the door is Satguru Dev. Doesn't matter what you do, all kind of sadhanas, yantra, mantra, tantra, whatever you do, puja, anushtan, everything. But finally, is there is coming what's called the Guru Kripa Hi Kevalam. Bhagavan Krishna also said, doesn't matter from which path, from which direction you come, ultimately I am there on that gate. And that he will lead you to the Guru Bhakti and through the Gurudev. राम कृष्ण से कौन बड़े, उसने भी गुरु कीन, तीन लोक के नाथ सतगुरु के आधीन। हु इज द ग्रेटेस्ट देन भगवान राम एंड भगवान कृष्ण? दे आर द गॉड ऑफ द ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। बट टू कम टू द ब्रह्म, इवन भगवान राम एंड कृष्ण, all the other incarnations, they have been doing the seva to the Gurudev. Day before yesterday, I was in the Rishi, Sandeep Rishi. Who was the Sandeep Rishi? Where Bhagwan Sri Krishna, chote tumhare jaise the, tab school jate the. Kahan jate the? School. To kahin likha to hai nahi, lekin baat hai. Kya hai? Likha to nahi tha. Koi nahi likhte na. Dande to unke bhi pade the. Kiske? Nene Krishna ko bhi danda pada tha bhai. Kaan pakda tha. तो अपने अगर कान खींचे गुरु जी तो क्या, कोई बात नहीं है। जैसे कान खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इस दिल से अंदर जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। कान खींचते ही वैक्यूम बनता है। व्हेन योर मास्टर विल पुल योर ईयर्स, इट मीन्स द होल ओपन्स, वैक्यूम ओपन्स and it sucks in the knowledge. Guruji pakdi choti, aur choti kare cham cham, aur vidya hai gham gham. Guruji pakdi choti,
और चोटी करे चम चम, विद्या आवे घम घम, और नहीं पढ़े तो डंडा पड़े धम धम धमा धम धम. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, सो इवन इट इज सेड दैट भगवान परमहंस रामकृष्ण वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, ग्रेट भक्ता, ग्रेट सेंट, एंड ही वॉज डिवोटेड डूइंग द पूजा टू डिवाइन मदर काली. मदर काली, काली मदर ऑलवेज हर टंग इज लॉन्ग आउट, एंड दैट्स व्हाई यू नो व्हेन यू गो टू द कलकत्ता एंड व्हाट यू कॉल देम, कौन सा देश काला था कलकत्ता, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, बंगाल. बंगाल में व्हेन द साधुस गोज देयर एंड देन दे मेक ए वेलकमिंग टू देयर हाउस, then all the ladies, I think gents also, but the ladies, they welcome the sadhus. How? कैसे वो welcoming करते हैं लोगों को? माथाएं बंगाल देश में आप गए थे? नहीं. वो जीभ निकालती है. मैंने कहा क्या हो गया? I was there. तो पूरी जीभ निकाल के, वो तो काली माता की जो पद्धति थी उस पद्धति से आपको स्वागत करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, और हमारे राजस्थान में जीभ निकालते ही अब सुगंध समझे कि ठोको थप्पड़ी निकाल दो बाहर. लेकिन वहां नहीं, दैट इज अ डिवाइन मदर्स ब्लेसिंग. एंड सो व्हेन यू गो टू द बंगाल एंड देन दे वेलकम्स यू एट होम, when they make the charan puja, aarti, and they welcomes you in the door, then they put tongue out and say, lugaya karti, mere ko to aata hi nahi, I don't know how to do. Lekin, thank you. That was something like that. Do you understand me? Yes, but don't tell me like that, okay? We are in Marudhar. We are in Marudhar Desh. And Mirabai said to Bhagavan Krishna, Kesariya Valma Padharo Mare Desh. Kesariya Valma Padharo Mare Desh. To Kesariya kaun hai? Wo Kesariya Bana Pehnane Wale Bhagavan Krishna, unko Kesariya kaha gaya hai. और वह बालमा मीन्स माई डियर वन, माई गुरुदेव. पधारो, वेलकम, प्लीज कम मारे देश, इन माई कंट्री. मीरा बाई से केसरिया बालमा पधारो मारे देश. लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि ओ हो वे बायो गावे नहीं भजन गावे कि वे कौन सफारे सफेरे लोग. केसरिया वालमा पधारो मारे देश, तो जाने क्या ओ हो, तो कोई गीत है लेकिन वो भगवान का है, भगवान की कथा हो रही है. दे आर वर्शिपिंग एंड शी इज कॉलिंग भगवान कृष्णा एज पितंबर. भगवान कृष्ण का दैट वॉज द कलर ऑफ हिज ड्रेस एग्जैक्टली लाइक यू हैव. Therefore it is said, नन्हे मुने बच्चे जो हैं बाल गोपाल, क्या कहते हैं बाल गोपाल, तुम बाल गोपाल हो ना, तो तेरे बाल है, हाँ तब तो गोपाल हो. चोटी है, बाल तो है लेकिन चोटी नहीं, तो बाल ने गोपाल कटे, गोपाल कहाँ है बेटा? चोटी रखोगे तो गोपाल बन जाओगे, तिले करोगे तो और कुछ बन जाओगे. That's it. You understand me? समझ गए बेटा? अब चोटी चालू कर देना. चोटी में बहुत शक्ति होती है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. बिंदु चक्र है कुंडलनी के अध्याय. हा श्रीमन नारायण नारायण.

0: श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की सच्चिदानंद भगवान की। सो आराध्य भगवान परमहंस परमहंस परमहंस किसको कहते हैं? वो आत्मा जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर दिया है, वही तो जिसको कहते हैं ब्रजाहवन के साथ में संन्यास दीक्षा होती है, तो दैट टर्म इज नोन एज ए परमहंस की दीक्षा हुई है। सो द परमहंस इज दैट वन व्हेन यू गेट अ सेरेमनी द यज्ञ एंड यू गेट दैट काइंड ऑफ यज्ञ ब्रजाहवन that time you have a sannyas diksha and then you have right to get the title of the paramhansa, that swan of the paramatma brahman, that's it. So Ramakrishna Bhagavan, paramhansa Ramakrishna, was great devotee of the mata Kali, and in the temple sometime he used to cry, you have to become like a little baby. Gurudev ke samane, in the front of the Gurudev, in the front of the God, you don't think that you are a great man, you are a director, you are an engineer, you are a prime minister, you are a president, you are a this. In the front of the Bhagavan, you are a Bal. Kya hai? Bal Gopal. एंड जब वो बाल गोपाल को भूख लगी है, दूध पीना है और माँ आई नहीं, तो क्या करता है? वो रोता है तो माँ दूध पिलाती है, नहीं रोते तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। यस, सो इवन द गॉड विल नॉट फुलफिल एंड फीड यू विद दैट नॉलेज दैट ब्लेसिंग्स दैट एनर्जी if you don't pray to God with the heart. Virah ki mari ban ban dolu, virah agni. There are many different kinds of the fire. Jata agni, dava agni, havan agni, chitta agni, krodha agni. Kya Maharaj ji? Vaisa hi virah agni. Virah means love. Virah means longing. Virah means devotion. Burning desires. That's called burning desires. But you can burn into the coal, but nothing will happen. You have to surrender to the Gurudev. So, Paramahansa Ramakrishna, the Gurudev of the a great saint, what you call the स्वामी विवेकानंद जी महाराज। सो स्वामी विवेकानंद जी वॉज नोन बिकॉज ही वेंट टू द मैनी कंट्रीज एंड ही वॉज गुड स्पीकर, बट बिफोर द विवेकानंद देयर वॉज अ ग्रेट सेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। यस, मैनी मैनी एंड नाउ देर आर मैनी विवेकानंद ग्रेट देन द विवेकानंद जी हु इज मूविंग इन द वर्ल्ड, बट विवेकानंद जी वॉज एक्सेप्टेड एज ए international or a national dignity of the saint as Swami Vivekananda ji, who is a great speaker, great things, there is nothing to say. We worship him. So, Paramahansa Ramakrishna, while doing puja hours and hours, and he was in the temple, Kali temple in Calcutta, कलकत्ता वाली काली काली कलकत्ता काली हाँ। सो ही वॉज क्राइंग मदर मदर मदर। सो फ्रॉम दैट इट इज सेड, आई एम टेलिंग यू, आई हैव वॉज नॉट देयर, दैट इज आई एम ओनली टेलिंग व्हाट वी हियर। आपको ही नहीं थे वहां, आप वहां थे क्या? हाँ नहीं गए, पर परमहंस रामकृष्ण को देखा था वहां रोते हुए?
1: नहीं नहीं
0: नहीं नहीं महाराज, हाँ नहीं,
1: बिलूर मठ में,
0: बैठो. सो भगवान

लखपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म गौ माता की जय, सनातन धर्म भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति।

सीधे प्रणाम भगवान की जय। श्री विश्वगुरु परम स्वामी महेश्वरंद गुरुदेव की जय।

Purnima. And all of you know a lot about Guru Purnima. I have been speaking many, many times and giving the lectures on what means the Guru Purnima. It is the Gu is the darkness and Ru is the light. But that light, which was the darkness, the earth was under the ocean. And Varaha incarnation brought this globe out of the ocean. That time, first time, when there the radiance, the light of the sun and moon, from that side was Guru, darkness, from the darkness to the light. Now in this modern world, we cannot survive, we cannot do anything without Guru. But Guru means not only some sadhu, not only rishi, but everything who is giving you the knowledge of, for example, how to drive the car, how to ride the cycle, how to write, how to do something, how to cook. Oh my word, 85% in the world people cannot cook. अरे किन्हीं खानों बनाना अभी को नहीं आजकल ठीक है भाइयों हैं जो को हमें एक बार बहन में लहसुन गाल दो ने जीरो ही गाल दो ने आई गाल दो ने वो ही गाल दो ने सब्जी में गाल दो ने मिर्ची डाल दो ने हल्दी डाल दो ने आई है वेगियो अरे आज हमारे भाई यहाँ बैठे हैं भानु भाई हैं अहमदाबाद वाले क्या नाम है धनजी भाई क्या जल्दी और किसा प्रकार का बढ़िया भोजन बनाया कि भाई आल में क्या सब्जी मसाला डालना है बैंगन में क्या मसाला डालना है और टमाटर में और इसके आप रखेंगे यानी गोल गोल आलू और अलग अलग सब्जी के अंदर अलग अलग मसाला होना चाहिए हमारा तो फॉर्मूला एक ही है बस एनी मसाला इन हरि ओम तत्सत तो आज देख लो कि 85% लोग भोजन नहीं बना पा रहे हैं अब इसमें क्या हो गया व्हाट हैपेंड कि जो महिलाएं जो शिक्षित है बहुत अच्छी है आज महिला चाहे आज इस युग के अंदर इन दिस वर्ल्ड अगर आपको शांति लानी है तो महिलाएं ही ला सक पाएगी नहीं तो नहीं होगा यस लो कोई ताली नहीं बजाओ लोग वास्ते वाह भाई भले बजाओ पहला बजाना है थी लेकिन वो महिलाओं को अहंकार हो गया मंकार को अहंकार हो गया बिजली पनीस ने तो आएगी पर वह कह के मैं क्यों रोटी बनाऊं बढ़ाऊ थारी माँ ने कह दे वाह बना दे मैं तो डॉक्टर हूं हाँ मैं तो बड़ी अफसर हूं मैं क्यों रोटी बनाऊ वो महिलाओं का अहंकार के कारण चूल्हा खराब हो गया चूल्हा की जगह किया आ गया गैस वो गैस हो गया पेट में यानी वो क्या हो गया कि एक रेस्टोरेंट हो गया और रेस्टोरेंट नहीं हुआ तो कोई आजकल ऐसे भोजन बना करके आपके सुपर मार्केट में जाओ लेके आ जाओ और गर्म करके खा जाओ अब उस बाईसा ने कहीं उठाए नहीं कि उनमें तो कहीं लगाओ वो कह तो कह के टमाटर का वो लगा दो ना कहीं के वो टमाटर का होता है केचप वह तो वो आदमी क्या मैं तो नहीं केचप करूं तो वह क्या के दही लगा दो अरे भाई जो भोजन का है कि बैठना तो छाया में हो बोलो केयर बैठना भयरे साथ छाई वो वेर
और खाना तो वही खाना माँ के हाथ का चाहे हो जहर। तो माँ जो बच्चे को गो कोक के अंदर से वो उनको न्यूट्रिशन देता है, फीडिंग दैट अपने शरीर से नाभि से, इसलिए वो माँ का भोजन ही

दिव्य भोजन होता है, वो प्रसाद होता है, इसलिए। लेकिन वो भूल गए, हमारे राजस्थान में तो सब हाल बढ़िया भोजन बनावे सा, मैं आपने क्यों हूं, विदेशारी बातों हैं। अब तो ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं कि मकान के अंदर किचन बनाते ही नहीं है, ग्रोसरी घर बनाते ही नहीं है, नीचे दो तीन रेस्टोरेंट होता है, जो को आ जाओ महीने का उनके ऊपर दे देते हैं ठेका, और आए खाना खाए अपने कमरे में गए हरीसोम। अब उसकी क्या क्या उस खाने पीने में उसका शरीर निरोग रहेगा, कैंसर होगा। सो दैट फॉर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन हैव टू कुक एट होम देयर सेल्फ बट लर्न फर्स्ट हाउ टू कुक, ये बात है। नहीं तो सो देयर फॉर इवन कुकिंग इज मास्टर एंड यू हैव टू बिकम ए मास्टर एंड यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो टू बी ए मास्टर। So all my bhaktas who came here from the other countries, and this is in the whole world ye message ja raha hai, they see you also. So my dear ones, please do two things. Don't put the children in the nursery and don't get food from the restaurants. Cook yourself, chahe husband cook hai ya wife, but माता बहु या पिता खुद भोजन बना करके खाओ, सस्ता होगा, अच्छा होगा। नंबर वन।